0: आदमी हर गणिंग है गड़े इक्कीस मिनट में देह राज्य गड़ाड़ में गणेश मिंदनी बात जर हिंदने में अधिक प्रोग्राम गण में वाह द कल में गंदा मामलों की इंसानी अगफार हुट मटक का कुरब जाने कंत दे है कि को बाह ये दें राज्य के इंसानी अगफार या बेह गुतन और में वाह द कल आयर का राज्य है गिना दे के बेर गम तो मसे कतरे हैं अन्न गम कब में मसले के राज्य बर पन मसले समाक में दें जे कमे गुत का में फाह कुरे फदें इंसानी अगफार या बेह गुतन वाह द कम डॉक्टर अब्दुल फैरोश ए दाखिल इस्तेमाल रक्कात फर्नियात बेहजार स्टेट मिनिस्टर दाढ़ मैंने इंसान वकफार या गोल तुम गानों तुम कंक तनफीत कर त्रुकुरंजे कम तें मी मसैकत बदलुमा की मी हूँ ट्रैफिक कुरमा देखो मसैकुर दिग मुद्दे गाँव में अनुगण कमगा मॉलिस एंटी ह्यूमन ट्रैफिक स्ट्रेटेजी की प्लान अब गुड़े तो कमा गुड़ हुई फरा तक गुड़ के मसैकुरमा हुई कंक देने का तुम हल हो खुरी गेंद बदलू में गौतम फाहकुरानी दें ट्रैफिक कुरमा देखो मसैकुर फाहकुर ट्रेफ्ट बिहैंड द स्कैम नो तमकरा ही तुम गायद खुफा मिशी आरोग दशो मी टेक्नोलॉजी या डिजिटल वसी तबेनो नहम उत गहि फैगिन ऑनलाइन स्कैम कंपाउंड तक मी हम ट्रैफिक कुरा मी बरे तरम दा कि मशा मी बदल हम दा खुश गे वेगु तक दे कोला फियल लड़ मुहिम कवे म चाल लड़ आशियार गत मि फाह गे गे मि दने गे तो एम राज्य ग फुर्सत बोर्ड कमे मी हम गा मिस राज्य के वर गिना दे गे बेर गे मी हम मसे कुरा गाव म कवाती मी या आल में बरा विस्नन जे कमे गो मि फाह कुरे वेने तिबे हुन खियाल फुल तहिसा करो मुगेंदवा तीन तीन हाथ रे सुमें हाय सुमें हाय मी आलम तिबे फुन नन्नोट करो वा गुलवा नंबर के एक इतरम पीएसएम या मेदर को तिबे फुन फर्स्ट लिबडा नवान पीएसएम या मेदर को नन्नोट करे वेन तिबे फुन खियाल फाल करे वेन आदि लवे दोडा नवान
1: देन अलावे एडवर्टाइज तुमगे फुर्सत होना ने हैगड फांसा सिंह को महा में प्यार हैगड 22 मिनट हिंगे आफिंगे तो
2: IKEA presents
3: Bajur Henne
4: IKEA Opticals in eng has rupiyai mate gi vefariya kura wage nasibiri farataka debe fulaka drum loan umra dature mi promotion ga hedu kura komme eng has rupiyai ka coupon ne mi ge iturun tafatu ki brand takun 30% hame discount adi komme thing has rupiyai mate kura ba vefariya ka fasate kuru fyak gift voucher adivas adivas nasiba gwazan kolle mang ailaya ratte hinnaiku avahan IKEA Opticals ziyara kura ba

0: हंगार
1: अंगार दो में दुर करी इकार गड़ फन रहे रिपीट इरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होके रे में दम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एक अन्य दिवे ही राज्य के आड़ों
3: अधियन अधियन की नज़र फती हो रही मेरी वर बड़ा हास वे अनेक कठिस्तु क्या रे भी मता मन्ना हाँ द देरा वे फ़ये
4: आहने के वर गया कुछ जे आहने न माला में कुरने
3: हास नू एब स्पेल द टी प्रोग्राम अडुए ही मती कहला हुरी हाँ कंका मंगहल्लो हो दागे ना
5: स्पेल द टी ये
3: आं मिकाल कंका दिमावे मा कांतक कुरे विदान गोईतन ए प्रोग्राम उंगे गे ना
4: Spill the tea. हमें कनी दिवे ही राज्य गाड़ो।
6: आदित्य दुआ होगे हवेरो हाथर गड़ फन रहेगा।
7: Repeat. बुद्ध दुआ होगे हवेरो हाथर गड़ फन रहेगा।
6: अधि बुढ़ास्पति दुआ होगे हवेरो फहद जहाड़ो।
3: एंगा सतरस्ते का 49 kHz medium wave अधि 89 megahertz FM band हमें कनी दिवे ही राज्य गाड़ो। इंतजार कर लवा।
8: Spill the tea.

0: मैं अर्गार्डिंग हावे रहातर गुड फनर मेट अडवा समंती गेंदवणी दिवे राज्य काडो
1: पानोस

0: दुनिया के हतरु पितु
1: राचेगे उतुरा देखुनु
0: खबरा मालूमात
1: हुट्टु मेन्नेति सव्वीस गडीरु
0: दिवहि राज्येके अडु
1: एंहा सतरस्ते का सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अध्यनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
2: फतिया का अलीबिलनी आ वाह के क्या को कुम्मे हवीरे निमिगिंदनी अधि मुलिंग आ वाह के किया दीफ कुम्मे दुहा कुम्मे दत्रुकुरंचे आ मगुतक किया दनी अनेक कावस आ वाह के एकमक एइंको में वाहक या कुंदस्कुरम भी आफिलाव ले, हासिल कुरम भी आई बुरते।

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुल कोरी एकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं